नागिन, कितने शॉट्स पिए नागिन, फिर कभी बाएं फिर कभी दाएं, नाचे तू जैसे नागिन, कहीं तेरा फोन है कहीं तेरे शूज है, थोड़ी गुस्सा है थोड़ी कंफ्यूज है, लगती है प्यारी पर उड़े तेरे फ्यूज, दिल करे ब्रेक तू ब्रेकिंग न्यूज।